0: सुरनार साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर
1: आज जुगाना कलातारी तिन लोए अगम निगम उदरण जला जमया गुरु अमरदास थपयो परगामी तारण तारण
0: आगे अंतक बधे।

थोड़ी दिन सतगुरु के ना पाया, मैं सतगुरु के ना पाया, सतगुरु विच आप रखे अंतर प्रगट आप सहाया, सतगुरु ने सलामत है जो मुझको मोह चुकाया।

कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगा तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, साध संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द विच

कर कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म ने पुराण दस में महल पाए सी खत्म भाव सो करे मन चिंदिया सुफल पाए सी।

उसनु देवता मान के पूजा भी उसकी शुरू कर दईए, उदे अगे दुध भी पा पा के उसनु असी पिलाना शुरू कर दईए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर वचन इस प्रति लिखिया, कहने सप्पे दुध पियाई है वे मुक्ति सट्टे, मुड़ के फिर भी मुंह तो विखी सुटेगा अमृत नहीं सुटेगा। इस करके हर वस्तु दे जन्म जात दे अपने अपने सुभा हन, असी उन्हां नूं बदली नहीं कर सकते, साडे बस विच नहीं। पर सतगुरु बादशाह महाराज जी जिस वक्त मैं आप जी दे जीवन काल वाले पासे ध्यान मार के वेखदा कि तुहाडे जीवन काल अंदर ऐसियां ऐसियां घटनावां होईयां हन जिन्हां राही असी वेख सकते हां कि तुसी जिस प्रकार दी किसे दी कोई अपने जन्म दा सुभाव जिदां दा भी क्यों ना होवे पर तुहाडी कृपा दृष्टि जिस पासे भी चली गई उसदे सुभाव नूं बदली कर दित्ता। असी भावें पत्थर दे पुजारी ते नहीं आ पर श्री पंजा साहब नूं असी कदे भी भुल नहीं सकते। अज भी श्री पंजा साहिब पाकिस्तान विखे ओ स्थान सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज दा पुकार पुकार के दुनिया दे लोकां नूं इह गल आख रहे हैं कि मेरे ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज की कृपा दृष्टि हुई है। अज भी उत्थे चले जाओ उस पंजे दे विच अपना हथ ला के मनुख वेखदा कितना मुलायम कितना सुंदर ओ पंजा लग्या होया, एक पत्थर दे अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी की कृपा दृष्टि ने उसनू मोम बना दिता है। रीठे का अपना जन्म जवाद का समा है, वह किसी वेले भी मिठा नहीं हुंदा कौड़ा हुंदा, पर जिस रीठे थले सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी जाके विराजमान होए हैं उस रीठे नू अज भी उस पासे मिठे फल लगते हैं जिधर सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जाके निवास किया। एक छोटी जी गाथा मैनू चेते आ रही है, सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी जंगल चों दी गुजर रहे सन, जंगल चों गुजरदिया होया बड़ा बियाबान एक खतरनाक किस्म का जंगल सामने आ गया, ते उस जंगल दे अंदर सामने की वेखिया बड़े सुंदर किस्म के फल लटकते हैं, सारा जंगल फलों का आ गया, बड़े वेखण च सुंदर फल हैं। मरदाने का मन ललचाया इस गल लई कि फल खाण नूं जी कीता, ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं आखण लग्या कहण लग्या जी गरीब नवाज पातशाह नेड़े तेड़े कोई किसी प्रकार का कोई पिंड कस्बा कोई शहर ग्रां नजरी नहीं आउंदा, जंगल पता नहीं कितने दूर तक है जी गरीब नवाज पातशाह जी, पता नहीं कितनी देर तक कितनी देर बाद जाके किसी नगर शहर ग्रां पहुंचांगे, जे कृपा करो आगिया बख्शिश करो ते मैं एक छोटे जे फल खा लवां। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आख्या कहण लगे मरदाने आ ये फल नहीं खाने, इनकार का इशारा कर दिता। थोड़ी देर तो बाद फिर मंग की, वार वार दो तीन वार वार मंग करन तो बाद सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज ने आख्या कहण लगे मरदाने आ सामने वाले दरख्त नालों जाके फल तोड़ ते खा लै, पर एक गल का ख्याल रखी पले नहीं बनने। मरदाने ने फल तोड़े मुंह च पाए ज्यों ज्यों खांदा ते मरदाना बड़ा हैरान होया कहण लगे इतने फिरदे मिठे फल इतने स्वादिष्ट इतना सुंदर फलां दा ए बगीचे ही मनो बनिया होया ए सारा जंगल, ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी मैनू खाण तो क्यों रोकदे रहे भला, मैं बल्ख बुखारे तक गया अफगानिस्तान तक गया काबुल कुंधार तक गया, सुंदर मेवे मैनू खाण नू प्राप्त होए वधिया तो वधिया फल मैं खादे, पर अज तक इतनी मिठास मैनू किसे विचों इतना स्वाद मैनू किसे विचों नहीं आया। ते इस लालच करके मरदाने ने एक मुठ्ठी भर फल जिहड़े सन अपनी नाल जेब च भी पा ले, ते ज्यों मरदाना दो चार कदम अगे तुरिया ते ओ फल मुड़ के फिर अपने मुंह च पाया ते कौड़ा जहर वर्गा फल वेख के मरदाने ने थुकना शुरू करता। सतगुरु पातशाह जी पिछे मुड़े वेखण लगे कहण लगे मरदाने की होया, कहण लगा जी पातशाह एक दाणा मुंह च पाया पर कौड़ा जहर हो गया। सतगुरु पातशाह जी ने आके कहण लगे मरदाने ये सारे का सारा जितना तू जंगल वेख रहे यह सारा जहर का जंगल है, सुरते सारे दे सारे फल तेन आख्या सी पले नहीं बनने, ते सतगुरु नानक पातशाह बाजू आखण लगा कहण लगे जी पातशाह ओ दे बड़े मिठे सन, मरदाना पल दी पल घड़ी दी घड़ी यह गल समझ ना सकिया कि वह फल नहीं सन मिठे बल्कि गुरु नानक की दृष्टि मिठी सी जिस पासे हो गई, सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने उन्हां दी तस्वीर बदली कर दी, पल अंदर ही समझ के सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी चरण कमलों से डिग पिया आखण लगा कहण लगा ज
जी ग्रीमन बाज पातशाह जी मेरे को पुल हुई मैं समझ ना सकिया। सतगुरु गुरु पातशाह महाराज की उस्तत अंदर पवित्र बचन उचारण कीते

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दी हजूरी विच जिवें उन्होंने माण कीता, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चतार दम अवगुण कौन चतार दम गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता जानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

वैसी। पिता कृपाल आज्ञाए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञाए दीनी, बारक मुख मांगे।

0: साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान कर देने
1: बिरथा

ज्योत स्वरूप है मन तू, मन तू ज्योत स्वरूप है मन तू, मन तू ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है मन तू, ज्योत स्वरूप।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा दा राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां दा प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राग